जोजोलपा अले लसकुसनी नामी भाजु मेजुपी ह्युपा ह गुनु गस ज्याज या त माया मतिना या नाचोपी सक्क सिता न जिउ पाखै इकु इकु लस नाते छासे छिता लसकुस या नाचना अले थौदा छ जे मेजक देसाको कुत या नाचना नामी भाजु मेजुपी छादसा रेडियो नेपाल मे महादैगु खया त नेना जि चाहिँ मे त ल्या हैगु दु ओ मे चिता न ये जि दैगु आशा वाला सजिन कया सना गु दु अले जि थौ थिति मे त हैगु दु ओ मे या त नेना छिसा यकु हे पुसे चंका दिफु अले चिता यकु छुन उज्याको खन्दुसा छिसा नम्बर सेसु ओ नम्बर के छिसा फोन याना दि त इन अब्दु अले नामी भाजु मे जुपि थौ ज्या ज्या त छिसा 9800103 मेकार स नेना दिफु दासा हलिनिङका चुना छिसा www.radionepal.gov.np ओ www.radionepalonline अले रेडियो नेपाल या हे फेसबुक पेज पाखेना चिसा हलिनियङ कसुना नेना दिफु स्वया दिफु अनि नामी भाजु मेजुपि थोज्याज आइतबा पतिक सुथेसिया चिता इजु या झिगु मिनेट निसे छिन्छता इतक जुई वै अले थोए ज्याज होले छिता थिति कथा या पे स्रष्टा निसे कया थिति लजका कगना चोपि भाजु मेजुपि नाप नापा थिति लस्तान जागु मे ह्युपा हगु मे निसे कया थिति तजिलजी नापा स्वपु दुगु नखचखा नापा स्वपु दुगु मे त देसना वै चङ्गु ख अले वया चना गुन दु अले थौ थो ज्याज न्याका चना गु दु जिरु बिस रेस्टा दास ज्याज न्याके त जिता प्राविधिक थौ ग्वाली बिया चना दि गु दु उत्तम पाण्डे जिउ न थुले दास निनामी भाचो मेजुपे आ दास झिन्यवा तेगु राष्ट्रिय मे नेने राष्ट्रिय मे नाप्ना पाछि त लस्कुस याना हे चोने दास आ दास झिन्यवा तेगु राष्ट्रिय मे जो राष्ट्रिय मे निने दैगु हजुर राष्ट्रिय मे ठोल थुमे नाप्नामा चितलस्कुसै एनाय चने झसन्दा चाहिँ थुमे चिसक स्यानी

0: जो निरामे फाजो मेजुपे छि सकल नेपा मिते गु अजी बजापे निसे छि पुर्खा ते गु छौक थाम बलिदान वेक पिसान दे छागु योगदान छिगु देसे तिथि कथै आगु यु पात वया सङ्गु दु थे यु पाते सयना नेपा मिते गु तिथि कथा यागु लजगा निसे ग नेपा मिते गु जीवन सुथन लाके तन ये कुइ कुकु त यना चोङु ये जुल तर गुब्लेन छु जी मखु गुब्लेन छु जुइ मखु दैगु पङ्ग त दासा वया चनाय चोङु जु थो दैगु छगु प्रकृति नियम न खदासा छगु राजनीति निसे कया छगु हलिया त सेला केगु बाला केगु भिङके गु छगु पलाना ख गेया न मनु ते त बाला केगु जुइ गेया न मनु ते त लेता केगु जुइ गेया न मन ते त सुख शान्ति दै दैगु कथ छुज्यागु एकु एकु कथ यागु लपु संघर्ष बलिदानी अले छौ कथ यागु थिति कथ यागु संघर्ष त जुया चुङ्गु जुल थै विशेष नेना दिल छिस जे नेवाते गो राष्ट्रिय मे मेना प्रपा सुपासा दिदक प्राविधिक पासन जानकारी बिया दिगु दु वेक सुख गरन ख वेक त सकल सुख सेना सना हजुर हेलो
1: हेलो जोजलापा नमस्कार जी एलेना ज्ञानेन्द्र साई
0: हजुर ज्ञानेन्द्र जी जाजल लस्कुस दु
1: सुभाय दु छि त
0: हजुर येलो गु था संख
1: जी येलो चाहिँ नि येले रान्ने नो
0: हजुर येलो ओरा नो जो अले छि ठ फोन का मको दे छु फोन दकले ढापाय बोला ला हजुर
1: खसकुस छुरका रास खिनेवाते यु खे सरकारी त त्यो दियो र राष्ट्रिय मान्ने
0: जो
1: सरकारी पछि कानुनी लडाइँ जिया छौँ अवस्था दु सरकारमा भ्रष्टाचारी कारवाही आएर बाँ ख कारवाही आना चाहिँ नि भ्रष्टाचारी जफत आऊ ठेवा चाहिँ नि जेठो खुसी छेउ थाले खाली जो जग्गा चाहिँ नि उर्वरा जमिन ख उके चाहिँ नि झिसँग कृषि उत्पादन या था छ परनिर्भरतै विरुद्ध आत्मनिर्भरता जी भने त्यो कार्यक्रम नसफल जी ख नि छोटो कार्यक्रम चाहिँ झ्याकेटिउले चाहिँ नि एक एकको सुभाइ दु थोरो खैँटा झ्याकेमा लमला फिट गेना मलजल याउख जी सूचना प्रविधि मन्त्री अहिले थो प्रधानमन्त्री नेप्रे नक्षेनमा थो अभियान चाहिँ सफल जुइमा जीवन साथ समर्थन दु मला भ्रष्टाचार या पनि ठेवा जफत याना चाहिँ नि देश लगानी याना कल उद्योग धन्दा खोलाइना चाहिँ नि युवा युवती त विदेश उन्मुख रोजगार सिर्जना यामा ल अहिले साथसाथै ठो कार्यक्रम चाहिँ नि निरन्तरता चाहिँ नि विगत सूचना प्रविधि अन्तर्गत सु विभाग लाउख वेकसँग सहयोग साथ बिहार ठो कार्यक्रम चाहिँ नि छेउ पाखा झ्याकदिउले योको बाहनाले चाहिँ ठो निरन्तरता डेमारी आशा कि ठो फोन यहाँ नौक अहिले जित मेन अनुरोध छु या घाज आजको खोइगु खजी धापट्टि दुर्गा लाल श्रेष्ठ जिउन चाहिँ सोया दिउपट्टि मेन यहाँ जिउ इनाप फुर्मे चाहिँ नि
0: झ्यौ ज्ञानेन्द्र ज्यू छि ल्याए दियो मेला चाहिँ आयो नि त्यहीँ ठिकै म फुक्या नि त्यहाँ छिमा फना चना छाय त जिमिस जिमिगु छिङखे छुट्या वा जिमिगु स्याडुले ठाउँ छ ठो मे मला मेगु वाले अवश्य न मालेगु जुइले थो मे ठेके त झिङ कुत या ठाउँ दस छिमा फना चना थो मे जी हाके पै मुख यो कोही बाँलाको मे ख
1: हेलो पिङ्गु सुटे पिङ्गु पसे दाउ दस उन तयार दिस है जिउ गनि
0: आ सिको एको एको सुबै दु जिउ हने नामी भाजे मेजु पिन थौ दस जि मे जग थेके तर जिन थु मे थेके गु दैगु क फोन दस तातु ता वइ चंगु दु ओके बाचा छुडा छु मया दै थे जया चंगु दु जिउ लसकु से या हजुर हेलो
2: त्यतु जि दे हो के हाम्रो उरुबी जिलाई
0: हजुर जोजलोपा
2: जोजलोपा रिबिजी
0: हजुर जाजल लस्कु सदु मफु
2: यो पिपु सुबाजो जे तिमले चाहिँ थाबा न जे चन्द्रबहादुर सके मफु जो
0: हजुर मफे का चना गुजुल हजुर चन्द्रबहादुर जी छि मफुला
2: मफु जो छिरल मफु जो
0: हजुर मफे का चना गुजुल जिन थौ मे जक ठेके दै ख तर
2: हजुर हजुर आछि हप्तास क उ गुल मला जो मुले दों ख थुन को टाइम आछु यो
0: जो
2: आछि आछि मिन ठक दिसन सुगु को जे खोला कइ दिसन मला अनि ठिकै जो आदमी न नि मा चिन्ह वा सरकार सुना चले नाचौँ खुवा मठुल काजी होइन सरकार बालिन सार्न चले नाचौँ ख न त सर्वोच्च अदालत चले नाचौँ ख ल खाएर आछ गु भाइ सरकार त निर्णय चिज सर्वोच्च अदालत रोकिन्छौँ मखला ए जिया आठौँ न भाइ सरकार सरकार ख न सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश सरकार ख म आशा बुझ रिमिसनवाला सरकार गुत नि या निर्णय ख व संविधान अनुसार झुल्की मजदुर कानुन अनुसार झुल्की मजदुर क्या व्याख्यत या ख रो रोके यापट्टि चिज लबो निसले मखला त्यो ठुम्मिले मुजु बमिले मुजु धाल ग ख त सरकार या निर्णय त रोके यापट्टि खोल मोक्ष होला गुत नि छोटो सिमाने व्यापार ख मखला अब गु चाहिँ सय रुपियाँ अब चाहिँ सामान हेमहरू रापट्टि खुवाउँ गु सरकार तल र सय रुपियाँ कम्ती फु ओके दुई सय रुपियाँ तिन सय रुपियाँ यहाँसँग ल्यामहरू त उके चाहिँ छि चाहिँ देशी चाहिँ सामान गुल्न उत्पादन रुचि उकै चाहिँ छि चाहिँ मूल्य वल्लो नि मलाई छि देशी जुनिचो चाहिँ पसा त छि चले जुन नि अब चाहिँ जसमा पिनेचोपट्टि छिसिमाने नाका पिनेचोपट्टि चाहिँ पसा चले जियो आ देशी पनि ठयो देशै चाहिँ पसा चले जुल व्यापार त बढे जुल राजस्व बढे जुल अब चिज चाहिँ सर्वोच्च रोकाइयो त सरकार चलाउन धामु फुलि आठौँ गरी खरी मोटुल गर्ने ठुलो सुभाहरू गर्ने
0: अवश्य न सरकार धैगुए छगु कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थाका व्यवस्थापिका यागु छगु छुट्यागुआ समष्टिगत रूप ख उकिन चाहिँ नै थोद्धी सल ज्या हे चाहिँ नि थुकिया त झिसम यो कथा क्या मजु छ्यादछ सरकार बाँलाक पिचुक सुयाताना घापा मजुई कथा सुयाताना बामलागु लिचो मलाइगु कथा न्याज्या फेमा दैगु कथा थोचने छौ छौली मेउली त छौ समानान्तर सरकार तख कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका उकिन थोद्धी खलाबला जुइगुली कया चिसाङ यो सतेगुलाई जिउ तर चाहिँ अनपखेन छु बामलागु लिचो ओलदास औकिया त न थगु मत मतान्तर यागुला पाँचे जुइ थिए छु तर सहल जुई सातमा छु न विषयवस्तु भने सातौँ उकी चाहिँ बामलाई दैगुला जिमुखु बाला गुहे खलाबला वा बाला गुहे लिचो उही दिगु आशा बोला छ चिसाङ कायमा थिए छु जुन थुले धा छादा छ नेपाल सरकार आयागु सरकार नुगु ख नुगु जुइ धुङका नुनुगु ज्या न चङ्गु दु नुनु ज्या ख सुयता न लिचो मलामा बामलामा धैगुपट्टि तातुना सखसिया गुए जुल अहिले सरकार न बाला केगु नीति फुलाङ्गु सरकार त्यसमा बामलाका चोङ्गुली बाला केगु नीति हे बाला केगु धका न वैकपिन वै चोङ्गु जुगली थोछौ टक्रा ठे खने जुगु ख तर थुकेता चिसा छौ सरकार यागु नियमित प्रक्रिया ख धका चिस काफत दासा बालाई थे चौ दासे चन्द्रबहादुर साके जुय त एकेको सुभा देसा से आ दासा छपु मे देसा मे ना प्रापा छित लसकुसे या धैगु ख न फोन सप्ति चुम पाचा चाल धका जानकारी वो दु खेताला जी मे थे के दई धका मे एक तर तातु ताम फोन वो गुली जी मे थे के फाया चङ्गु मधु तासे फोन सब्दी दिमा पासा त लस्कुसे नासना हजुर हेलो हजुर जजलपा जास लस्कुस दु जास सुथे नुवाना दिस हजुर लस्कुस सुख गना नख हजुर श्यामज्यू छु दु छु गु नुगो खाँदै दिस हजुर नखा चखाएलास् त सकसित न बिन्दु
3: नाइला
0: ठिकै मेचा दुसा दर्ता हया दिस दैगु इना भ्यासे थौ भ्या सुभा जयमा भ्या जो आदर्श चपु मे दे मेन आफ्ना पछि त लस्कुस या नयाँ चोने झासँग धासे थो मे छिक पिनिगु नीति

0: हसिका नेवातेगु तजिल्लजी नेवातेगु थिथि कथयागु फुक ज्योग निशेङ्कया थना पुरातात्विक महत्व कुबिगु संस्कृति सम्पदा नपा स्याङ्का चङ्गुदु नङ्का चङ्गुदु विकास निर्माण या नामेदासे थोक्या त सक्कसिन सिकेनु थु सक्कसियागु सम्पत्ति ख नेपा नेपा दुने चोपी नेवातेगु जक मकुकी सक्कल नेवातेगु मसिका ख सक्कल नेवाते त जक मकु सक्कल नेपा मि पिन्ता मसिकीगु पहिचान ख दासे फोन स्वतिमा पासे त लस्कु स्याना सना हजुर हाल फोन काम गर्दा यो फोन तातो ताम वइचन बच्चा आएको छुट्टी चिउनु पगा दिस विरोध
1: आठो थियो रेडी नेपाल चाहिँ आइतबार पटक चाहिँ नि त नेवा ज्याज नेपाल भाषा ज्याज त नुगले तयार चाहिँ नि गुल्न सटै दिल दाजु कि त के पि अनुभव पि लागे कै पिन यो क्वेस बाट दिसामा नापा छिस त गुल्न स ट्याबले चाहिँ नि छुया गठियारका चाहिँ धे चौँ जुया आ छि नुगले न चाहिँ नि सक्सिया न चाहिँ सर है ट्यामा छिगुन स मलाई झिगुन स मलाई छि सक्सियो चाहिँ नि मुना स झ्याको छ जग सम्बन्धित ठासे नाप्न टाइलहरूका छिस स टया वै चुनौ ख आ छिया चाहिँ नि बा बैयो निका सम्बद्ध संरक्षणका भूमि निका डक्क छि पाख्या चाहिँ नि झिना न चुना पठन चाहिँ पास्ने पाखेन न्याना चुना ठाउँ अवस्था धाइटे छिटो उल्टाको अन्याय अत्याचार जोडु कि गुल्न नेवाटे बस्ती अन चाहिँ नि ठाठासे चाहिँ नि छेउ सम्पदा संरक्षण मयासे चाहिँ नि ओठासे चाहिँ नि स्तुपदे हरेक जे सिङ्गा सिङ्का न चाहिँ नि न तपलेहरूका चाहिँ ठो चाहिँ अवस्था चाहिँ भत्त प्यासे मजो ठे तना स्थानीय सरकार छे प्रदेश या चाहिँ सङ्घीय ओ स्वत चाहिँ नि सरकार पिन्छन चाहिँ नि थन गुल्न स्थानीय चाहिँ स्वायत्त सरकार चाहिँ नि छेउ चाहिँ विचार मनमा उठासे सम्पदा संरक्षण धै पिनी पिन्छ स्थानीय छि बासिन्दा चाहिँ नि व्यक्ति टेसन चाहिँ नि यही जो कारण एना चाहिँ नि गुल्न चिज चाहिँ नि छिटो ललममा तर लयौँ अवस्था ग्याउँ जिम्माहरूका ढासा चाहिँ नि छिटो सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ वनमा उख अव्यवस्थित हिसाबमा चाहिँ नि मयासी चाहिँ नि घुल्न चाहिँ नि थियो हेलो
0: हजुर
1: सम्पटै लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय टाक्न चाहिँ थियो अभिलेख डो जो कारण होइन छोटो चाहिँ सकिसान झगडिन यहाँ दिन झिनापिन एज सम्पटैपट्टि मेसट नहाएको थिएछ हिठाइपट्टि रेडी नेपालले चुना न लुइट्यो विषयले तरौँ खटे आटक न ध्याप्न चाहिँ मन्यौन कारण होइन थन चाहिँ याक नै चाहिँ छौ
0: हेलो सरकार डु नि हेलो सरकार पाखे अन वेबसाइट डु अन चाहिँ फोन ल्या डु अन पाखे अहिले मेसेज नै टिपिया के जिउ अन पाखे
1: थन चाहिँ नि ज्याएन उनी जे फट्ने फट्ले छिसँग चाहिँ नि छाडा छ थोची चाहिँ नि सांस्कृतिक सम्पदाय त चाहिँ नि छिसँग विचार त छ मिय चाहिँ नि वडा नम्बर 22 चाहिँ नि मर्छ माने त तर लुइटे हाल चाहिँ अय अवस्था तक ठेङ्गान मर्छ माने कारण होइन छिसँग चाहिँ सम्पदा संरक्षण याना चाहिँ नि सांस्कृतिक सम्पदा या छ तर चाहिँ मर्न जाए जिया चाहिँ सुन्नुका ट्याप
0: हाँसेको सुबेदु लिपया दिसना बोतिका दिता इनाब्दु वेकख राजेन्द्र नकमी लुहिटी ये पाखे वेक्ल शब्द या दिएको छु ल अहिले वे क्या सहन छिस नेना हे दिया जिल्ल जिदिगु आशा बल्ल सकया छ न अहिले अवश्य न ख नेवाते गु लिपि नापाया गु पुरातात्विक गुली न सम्पत्ति सम्पदा मसिका या त कय अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तक न थुकी आगु छौ कथन्दासा दसु दुसेल नागु बल्लागु नेपाया त चाहिँ माख तैगु नेपाया पहिचान मौलिकताले नेपा दैगु सुख नेपा दे दैगु गनदु धैगु लिता माका तगु धैगु हे नेवा भए नेपाल भाषा ख उकि त्यो भाषा या त मके त झी सकल नेपामी पिस उक्ति गेङ कहे त्यो झिसङ कुत यामा दासा थथे यान थिथि आदिवासी जनजाति तेगु भाषा निसिङ कया छिगु नेपाली भए या त न बालाकेगु नीति न सुथौँ लागेको नीति न झिसङ कुत यना चनाको जुल्ल झिसङ छेला चनाको ए जुल तर विकास निर्माण यु नामे थना चौपी स्थानीय निसिङ कया थना चौपी रैथाने पिनीगु सम्पत्ति निसिङ कया उमी गु फुक पुरातात्विक निशी कया नापाली सिंह हनावया चङ्गु परम्परा चलन तेता नङ्के गु ज्या या मजु विकास निर्माण या त सक नेपाया पि

न मनु दु समुदाय दु इमित छौक अफुके गुदका थन चोपिन्दा गुपति दुख बिगु ज्या ज्या चङ्गु दु उकिया ता कया चि गुलिन फोन के सब तया दिबे भाजु बि ख वेक पिसङ कुङखिना चङ्गु दु थोखया त अवश्य न आयागु सरकार फिङ्की जिदै गु आशा भलसा कया चना अले थोए खया त कया अवश्य न ध्यान बि त न गुलिन सरकार त दु केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार होइन अवश्य नै ज्याइ दिएको आशा भलसा कासे आधा छ छपमे देशा मेन आफ्ना पा आछि त लस्कुसे या नजने सुभा।

0: लसो फ्याफुल्ला रेडियो गेताङ मुगलानलाई गे अर्थात् वैदेशिक रोजगारी राङ्द टेनमुला गा सूर्य मोक्तान वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ रोरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल से शोभा चो गेताङ सातला तिरेम दिनी रे आइतबार कुनु चुनुन दुईरी प्रसारण लाबन खाप मुला तिनीले गेताङ मुगलान न गेरी समाधान कल सेन्टर से गे लाबन खाप मिला गुनासो थेन समस्या गदेता खरङ लसे छाङ्न लाबन खाप मुला गे लाब मिदा ताबन खापा समस्या गदेता छाङ्न लाबरी सम्बन्धित निकायका देशे खारङसी गेलाबन खाप मुलुम बिबताम्री सम्बन्धित निकायला फोकल पर्सनका देशन लाबताम ज्ञानबारी खाम्सल मला वसेम वैदेशिक रोजगार बोर्ड लुनखाङ से पिनमान खापा लोलो लोलो महत्वपूर्ण सूचना थिन साङ्गुरका देनुन तिनीलाई गेताङले थानबारी बाङ्लासेल मला गेताङ लिच्छ दोना ज्ञानबारी गाङदा मैजन मला गे थेन गे लाबा मिता तुबा खाजी बैनुन सूचना थेन जानकारी पिनबारी गुनासो ज्ञानबारी थेन खाजी बैनुन समस्या गाथे खाजी बिसाम सजिलो सेन छाङ्न लासे पिनबारी थेन गे लाबा मिता पिनुन तोबा सेवा गादेदा प्रभावकारी सोबारी विषय सरकार से समाधान कल सेन्टर फङ्गबहिन्ना वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ निबुम्बा समाधान कल सेन्टर से गे रोजगार थेन सामाजिक सुरक्षा लोनखाङ नाङला लोलो लोलो निकायका दिथेन सम्बन्धित गे थेन गे सम्बन्धीलाई जानकारी गुनासो थेन समस्याका दि दान्दे दोना सजिलो सेन छाङ्न लासिपिनबारी रुहला बन खाप मला
1: ये रोजगार थेन सामाजिक सुरक्षा ब्लोनखाङ थेन थे नाङला निकाय कादेरी फोकल पर्सन तोकलासी गे थेन गे लाबा मिदा तोबा लोलो लोलो जानकारी गुनासो थेन समस्या कादेदा छाङनालासी पिनबा गे समाधान कल सेन्टर से लवन खाबमुला समाधान कल सेन्टर ठ्वाङबालन ग्रेन उद्देश्य विभाग गे लाबा मिला गुनासो किनबा लिसा गे लाबा मिसे लाबा गुनासो थेन समस्या कादेदा छाङनालासी पिनबा हिनला खास लासी सेन्टर रि खाबा गुनासो थेन समस्या खादेदा खारङ लासी छाङ्न लासी पिनबान खाबा मलाओम बिबा तामला जानकारी पिनबान मुला समाधान कल सेन्टरला सुपरभाइजर सरिना महर्जन
2: समाधान कल सेन्टरमा श्रमिक र मन्त्रालय बीचको सहकर्ताको भूमिका
1: समाधान कल सेन्टर सेजा गेलाबा मिथेन ब्लोनखाङदा तोबा रोकादे लाबान खाबा मुला ओसेम गेलाबा मिदा तोबा सूचना थेन जानकारी कादेनोन सम्बन्धित ग्लादोना धोना लासी छाङ्न लाबारिनोन रोलाबान खाबा मुला ओसेम बेनान गेलाबा मिसे लातो कर्तव्य थेन याङतामला फेरी जानकारी कादे पिनबा गे समाधान कल सेन्टर से लवन खाबमुला गे लाबा मिसे राङदा ताबा समस्या थेन गुनासो कादे थानबारी फोन लामा टाङ्गा आनिबा टोल फ्री नम्बर 1141 श्री एनसेल थेन एनटीसी गोर नि ग्याम्नोन फोन लाबारी खाम्बामुला ओसेम गान्दा इमो व्हाट्सएप थेन भाइबर ग्याम फोन लाबारी खाम्बा एनटीसी ला मोबाइल नम्बर 9853-47222 थेन अर्को एनसेलला नम्बर 9808-0013 फोन लासी राङला समस्या थेन गुनासो कादे पाङबारी थेन म्यासेज पुइबारिन खाम्बामुला छुराङ लासिन नानीला इमेल ठेगाना samadhan@fev.gov.np इमेल लाबारिनोन खाम्बामुला ओसेम सामाजिक सञ्जालला फेसबुक थेन इन्स्टा ग्राम ग्याम्नोन गानिदा सम्पर्क लाबारी खाम्बामुला चु सेन्टर सेजा निचुइब्ली घण्टानोन सेवा पिनबान खाबामुला गानी सेजा खाजिबाइनोन समस्या थेन गुनासो कादे खावाला पाइनोन टिकेटिङ सिस्टम ग्याम छाङ्न लाबारी बङ लाबान खाबामुला चु सिस्टम रिजा गुनासो थेन समस्या कादेदा दर्ता लाबारी प्रयोग लाबान खाबामुला गान्दा खाजिबाइनोन माध्यम ग्याम से सम्पर्क लाबा मुसाइनोन थे एनोन टिकेटिङ सिस्टम ग्याम्नोन छाङ्न लाबारी बङ्लाबान मुला थे लिछाजा सम्बन्धित निकाय विभाजा गे रोजगार थेन सामाजिक सुरक्षा ब्लोनखाङ नाङला बेनान निकाय कादेरी मेन्दो कारकार फोकल पर्सन तोक लाबामुला थेनोन फोकल पर्सन कादेदा गानिसे थे टिकेटिङ पिनबान खाबामुला थेनिकादेशे थेनोन टिकेट ला माध्यम ग्याम रेस्पोन्स लावन खाबामोला थेनलन आधारी गान्से कल ब्याग लासी खाल्छे गुनासो लाबा हिन्ना अथवा खाल्छे समस्या थान्बा हिन्ना थेन्दा कल ब्याग लासी पाङवान खाबामोला
2: उहाँहरूको समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ।
1: श्रमाधान कल सेन्टर री गे लाबा मिसे लावन खाबा गुनासो कादेदा सम्बन्धित निकाय ब्लोनखाङ विभाग बोर्थेन निकाय कादेरी फुइसी छाङ नालाबारी बङ लावन खाबामोला गे रोजगार थेन सामाजिक सुरक्षा ब्लोनखाङ थेन थे गामला निकाय कादेरी खारङबा खारङबा गुनासो कादे खाबामोला ओम विभाग ताम्ला जानकारी पिन बानमोला गे रोजगार थेन सामाजिक सुरक्षा ब्लोनखाङला फोकल पर्सन दीपक विष्ट फोकल पर्सन विश्वासे स्यान्दो निकाय कादेथेन सम्बन्धित गे लाभा मिला गुनासो थेन समस्या कादेदानोन छाङ नालाबारी रो लाबान खाबामोला बिसी सुङबामोला
0: गे रोजगार थिन सामाजिक सुरक्षा ब्लोनखाङ रिजा विशेष लासी गे लाभा मिला गे सम्बन्धी ला समस्या कादे खाबामोला थेराङमा समस्या कादेता छाङ नालाबारी ब्लोनखाङ नाङला विभाग कादेरी पुइबान खाबामोला विभाग से जा राङला गे दिम कादे ग्याम खाजिबैनोन समस्या खाला थेन सम्बन्धित मोला थेनोन ग्लारी पुइबान खाबामोला थेक्लारी पुइसी समस्या त छाङ नलासी जिनमा लिच्छ जा ब्लोनखाङ रि जानकारी पिनबमला थेनोन जानकारीलाई आधार रि गन्छे जवाब पिनबान खापमला गे लब मिला गे सम्बन्धी थेन सिजनल गे सम्बन्धी ल ताम्रे ल्यामन मिसे ङय बछरबला बमला उसम अर्को जा फिरके भुलिनिसे गे लब दुइरी ठगी लबला उजुरीका देनन खापमला फिरके भुलिनिसे गे लब लिछ टाङ्गा आयाङबा गे आयाङबा थेन फिरके भुलिगामसे एक हबा लिछनन टाङ्गा आयाङमा गदेला उजुरी गदे लामा खापमला थेरङमा समस्या गदेदा फिरके भुलिनिसे वैदेशिक रोजगार विभाग सम्बन्धित समस्या थेन गुनासो गर्दै विवाह दुई तलब थेन सेवा सुविधालाई तम खापमला विषाम गे थेन छोङ सम्बन्धी विभाग बबर महलरी पुइबन खापमला
1: श्रमाधान कल सेन्टर री खावा गुनासो कादेरी लाना राङबाजा वैदेशिक रोजगार बोर्ड लोनखाङ थेन सम्बन्धित गे लाभा मिला गुनासो थेन समस्या कादे ओसेम गे लाभा मिसे याङतोबा कल्याणकारी सेवा थेन सम्बन्धित खाबामोला बिसिनोन बोर्डला फोकल पर्सन तारा मैनालीसे सुङबामोला
3: यस बोर्ड सचिवालयले गर्ने विशेष काम भनेको कल्याणकारी
1: जो बोर्डला लोनखाङसे कल्याणकारी गे लाभान खाबामोला कल्याणकारी गे नाङरिजा गे लाभान मुबा धुइरी खाफै मि सिजी बिसाम थेला सिबा लुहिरोदा नेपाली बातोबा टाङ्गा रो लातोबा सिबा मिला जाजाकोला कादेदा छात्रवृद्धि पिनबा राङबा गे कादेजा बोर्डला लोनखाङसे लाभान खाबामोला चुराङबा समस्या थेन गुनासो कादेदा सम्बन्धित पालिका थेन दिम थेमे कादेग्याम खाबासे छात्रवृद्धिला ताम खाजी बिसाम छात्रवृद्धि साखारी पुइसी छात्रवृद्धि पिनबान खाबामोला विशेष लासी उद्धार लादोबाला तामकादे लाना खाबासे उद्धार लाबा विभागरी पुइबा लिछा ग्लेबोन खाङ्री जानकारी पिनबान खाबामोला ओसेम गे ताबान मुलाकी आरे विवा तामजा गन्ना सिस्टम सेन उन्बामोला यदि खाजिबैनन समस्या कादे छाङसी जिन्बा मुलाबिसाम गन्छे चुग्याम फोन लासी जानकारी पिनबान खाबामोला ओसेम समस्या थेन गुनासो छाङबा प्रक्रियारिन मुबाडिम बिसाम थे समस्या कादे आछाङदे दोना प्रक्रियारिन खलासी पिनबामोला गान्छेजा चुरी खाबा बेनान समस्या कादेदा जरुरी लानन जरुरी थेन सामान्य बिसी गोर्सोम नोन बोरी बोलावन खाबामोला सिवा मिला लुइरो बातोसाम उद्धार लातोबा मुला बिसाम थेराङबा समस्या कादेजा देपेन फलोअप लादोबा केस बिसी थानबान खाबामोला थेराङ लासी फलोअप लादोबा केस कादे नाना सर म्याडम कादेसे ग्लेबोन खाङ्री सम्पर्क लासी छाङ नालाबान खाबामोला
3: दूतावासमा सम्पर्क गरेर
1: श्रमाधान कल सेन्टर री खावा गुनासो थेन समस्या कादे लाना राङबाजा वैदेशिक रोजगार विभाग थेन सम्बन्धित खाबामोला विभाग थेन सम्बन्धित गुनासो थेन समस्या दा छाङ नालाबारी विभाग से खारङबा खारङबा रो लाबान खाबामोला ओम विवाद ताम सुङबान मोला विभागला फोकल पर्सन अनिल सुवेदी
0: पासपोर्ट सम्बन्धी लाल समस्या गादे खाबासे नेपाल डे खाबरे आम्याङबा थेन गेलाबा ग्लारी ठगिलाबाला गुनासो गादे लामा खाबामोला मेन पावर से ठगिलाबाला ताम्जा गन्न विभाग से सम्बन्धित मेन पावर कम्पनी द पत्र पुइसी थेन द चुरिन होइसी थेन गोर्घिनुन पक्षलाई मिदा ग्लागी गरी थान्से छाङनालाबान खाबामोला ओसेम गेलाबा ग्लारी ठगिलाबा ताम्दा जा गनिसे गेलाबा मिदा खाप मेन पावर कम्पनी से पुइबा हिन्ना थे मेन पावर कम्पनी थेन थे युला ग्लेबन खाङरी सम्पर्क लासे छाङनालाबान खाबामोला
1: गेलाबा मिसे लामा जानकारी किनबा निकाय कादेरी गरी सामाजिक सुरक्षा कोष नुन गोर्खी परब ताबामुला गे लबा मिसे रिबा सामाजिक सुरक्षा कोष तेन सम्बन्धित जानकारी कार्य पाएन नुन पिनबन खाबा मुला बिसी सुङबान मुला कोषला फोकल पर्सन पार्वती श्रेष्ठ
4: सो
1: सामाजिक सुरक्षा कोषरिजा फिर्किया भ्युल्डी गेलाबारी निमा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषरी आबद्धता छि योगदानला टाङ्गा फानुन तोबा मुला बिसी पाङबा लिसा लामा राङबा फिर्किया भ्युल्डी गेलाबारी निबान मुबाका देशे श्रम स्वीकृति किनबा धुरी सामाजिक सुरक्षा कोषरी बो किनबान खाबा मुला थेताबासे लामा राङबा सेजा गन्दा चु सामाजिक सुरक्षा कोषरी बो किन्सी जिनबा लिसा चु कोसे खारङबा खारङबा सेवा सुविधाका दे पिनबान खाबामुला योगदान लातोबा टाङ्गा खारङलासी फाबारी खाम्बामुला बिबाराङबा लानन तामगा दे न्युबारी खाबामुला ओसेम सरकार से लिछाला धुरी बाबा गोर्की ठिम्जा तिला मुला विषाम चु सामाजिक सुरक्षा कोसरी दिङ गिक दोना बो किन्सी जिन्बा गे लबा मिसे फिर्क्या ह्युलग्याम एसी खाबा धुरी गदे दामन इन्सला टिभी बाबा मुसाइनोन भन्सार छुट पिनबान खाबामुला चुरङबा ताम न्युबा छारवा लाबारिनोन चुरी लानन मिकादे खाबामुला धतेजा फिर्क्या ह्युल्डी गे लाबारी निबा कादेदा चु कोसे थेन्ना जा जामेदा ब्रिवा डोबारी तोबा खर्च दिम सोबारी तोबा टाङ्गा थेन सा ग्लुबारी छे तोजी बिसाम छे पिनबान खाबामुला चु ताम न्युबा मि कादेनोन लानन खाबामुला चुराङ लासिन फिर्क्या ह्युल्डी गे लाबारी निबा धुरी खालाइसे ठगी लाबा मुला बिसाम चुराङबा ताम बोर्सी खालाङ नितोबा मुला बिसी न्युबा छारवा लाबा मि कादेनोन लानन खाबामुला थेरङबा मि कादेदाजा गान्से श्रामाधान कल सेन्टर री नितोबा मुला बिसी पाङबा थेन सेन्टर री पुइबान खाबामुला श्रामाधान कल सेन्टर री लाना राङबा खाबा गुनासो इपिएस ठिम ग्याम कोरियारी निबा प्रक्रियाला फिरी खाबा मुला बिसी सुङबान मुला इपिएस शाखाला फोकल पर्सन राज किशोर शाह शाखाला फोकल पर्सन शाहसे गे लबा मिसे लबा गुनासो कादेदा पाएनोन छाङ नलासी पिनबान खाबा मुला बिसी सुङबान मुला
0: चुरी खाबा लामा राङमा जा राङलामिन रोस्टर री मुसाइनोन कोरियारी निबारी आम्याङजी बिसी गुनासो लबारी खाबा मेगा दे लामान खाबा मुला ओसम फिर्का बिल्डिङ निसे जिनमा लिछा गोर्खे ग्लारी गे लबन खाबासे अर्को ग्लारी निब दुईरी लामान खाल्ला समस्या गादे नादो बताम गादे बासिन खाबा मुला चुनाव नसी तिरेम कोरियारी निसी खाबा गादे दा गनिला टेक्निकल ग्योरी जा सिबिटी बिसी पाङबा मुला थेराङमा रुहका देशे जा गन्ना गे लबारी निबाला भिसा इस्यु आताजी बिसी गुनासो लबन खाबा मुला चुनावमा समस्या गादे दा छाङना लबारी बिसी गन्से इपिएस सेन्टर नेपाल ग्याम कोरियारी रेमरेम पत्र पुइबन खाबा मुला चुनाङमा बाङ्गा दे गनिसे लामान लबन खाबा मुला
1: गे थेन छोङ सम्बन्धीला ताम थेन सुरक्षा विभाग थेन सम्बन्धित ताम्री लबा गुनासो कादेदा विभाग सेनोन छाङना लबन खाबा मुला बिसी सुङबान मुला विभागला फोकल पर्सन प्रताप साउत
5: कुनै पनि प्रतिष्ठानमा
0: खाजिबेनोन प्रतिष्ठानले गेलासिटीबा मिदा स्यान्डुन ग्लारी लिस बिन्जी जस्तो कि गोर्खे ग्लारी गोर्खे खाला गे लबन खाबा मुसाइनोन स्यान ग्लारी निसी स्यान्डुन गे लादोब ताजी बिसाम गान्से थेरङमा मिगा देदा रु लबन खाबा मुला अर्को जाति लमला बिसाम नेपाल सरकार से तोग लबा खाप्पै बिमा च्याङना तलब थेन सुविधा गादे पिनबन खाबा मुला कि आरे बिब ताम गादे नुन च्याबन खाबा मुला चुरानु लसे खाजिबेनोन प्रतिष्ठानले गे लबन खाबा मिदा नेपाल सरकार से तोक लबा अनुसारला स्यान स्यान सेवा सुविधा गादे पिनबन खाबा मुला कि आरे बिसी नुन च्याबन खाबा मुला थेतापछि विभाग से छाङना लबारी खाममा समस्या गादे दा विभाग से छाङना लबन खाबा मुला बिसाम नन्ना गेदिम से छाङना लदब समस्या थेन गुनासो गादे खाबा मुला बिसाम नन्से नन्ना गेदिम रि पुइबन खाबा मुला
1: श्रमाधान कल सेन्टर से गे लबा मिला गुनासो थेन समस्या कादे दा छाङना लबारी बङ लबन खाबा मुसाइनोन थे बङ अझैनोन प्रभावकारी ताबारी खाम्बा आरे गे लबा मिला समस्या थेन गुनासो कादेदा छाङना लबारी गे रोजगार थेन सामाजिक सुरक्षा ब्लोनखाङ थेन थे नाङला निकाय कादेरी फोकल पर्सन तोकलासी छाङना लबारी बङ लबन खाबा मुसाइनोन प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुबा अध्यागमन विभाग कन्सुलर विभाग थेन नोर ब्लोनखाङ थेन नोन डिक्सी प्रभावकारी गे लबारी खाम्तोबा मराङबा मुला थेताबासे गे लबा मिला समस्या दा छाङना लबारी बेना निकायरी फोकल कल पर्सन तोक लबारी खामसाम श्रमाधान कल सेन्टर अझ प्रभावकारी तावारी खाम्बा मराङबा मुला
0: चुनुन विशेष रिपोर्टलाई छ्याम छ्याम्री तिनीलाई गेताङ याम फेसिने बा दुई तासे जेम्बला गेताङ मुगलानलाई गे अर्थात् वैदेशिक रोजगारीलाई फेरि गाङला तिलाई सल्लाह सुझाव थिएन प्रतिक्रिया गादे मुला विसाम गनीलाई इमेल ठेगाना welfare@febi.gov.np थिएन info@febi.gov.np इमेललाई बढी राङ्दा मैसेन मुला तिनीलाई गेताङ याम छुपारी राङ्दा लामा लामान थुजे छे खाबा सातारी छार विषयरी छानुन गेताङ बासी खासेला मुला थे दुई दोनादा गेताङ सङ्खेन नाना इन्दिरा थिङथेङ सूर्य मुक्तान्त विद्यादंशुको लसो फ्याफुल्ला।

ये रेडियो नेपाल है। हफीज खान से उर्दू में खबरें सुनिए। माली साल 2092-93 तक खाना पकाने वाले एलपी गैस की मराहत को खारिज करके बर्की चूल्हों में मराहत फराहम करने के मंसूबे के साथ हुकूमत ने बिजली की खपत में इजाफा और बरामद से मुतालिक पॉलिसी 2083 मंजर आम की है। वजारत तवानाई अबी वसैल और आबपाशी ने आम आवाम की तजावीज की गर्ज से मंजर आम करदा उस पॉलिसी में ने खाना पकाने वाले एलपी गैस के इस्तेमाल में सिलसिलावार तौर पर कमी लाने का हदफ लिया है। वजारत तवानाई के मुताबिक बर्की चूल्हों में मराहत फराहम करने और शफाफ तवानाई की खपत को बढ़ाने के हदफ के साथ हुकूमत ने यह पॉलिसी मंजर आम की है। बर्की चूल्हे के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ट्रांसमिशन लाइन की सलाहियत को बढ़ाते हुए ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसमिशन नेटवर्क में जिद्दत लाती जा रही है। वजीर तवानाई अबी वसैल और आबपाशी बिराज बख्त श्रेष्ठ इससे कबल ही बिजली की खपत में इजाफा और बरामद से मुतालिक पॉलिसी 2083 को मजीद अमली और साइंसी बनाने के लिए मातहत के महकमों को हिदायत कर चुके हैं। वज़ीर सनअत तजारत और फराहमी ने शक्कर की किल्लत जाहिर करके काला बाजारी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए मुतल्लिका महकमे को हिदायत की है। भारत ने शक्कर के बरामद में पाबंदी लगाने का फैसला करने के साथ ही नेपाली बाजार में मुरतब हो सकने वाले असरात के बारे में वजारत ने गुज़श्ता जुमा को मुतल्लिका महकमे के साथ मशावरत की थी। वजारत के मुताबिक 8 महीनों की ज़रूरत के बराबर शक्कर का ज़खीरा मौजूद होने के बाइस फौरी तौर पर शक्कर की किल्लत नहीं होगी। वजारत के मुताबिक नेपाल में शक्कर के कारखानों साल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और गजाई अशिया इंतजामिया और तजारती कंपनी किसी ने भी गैर मुनासिब तौर पर ज़खीरा अंदोजी करने या कीमत में इजाफा करते पाए जाने पर मुरवजा कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। साल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक उसके पास 2000 टन शक्कर का ज़खीरा मौजूद है। वजारत नशरियात व इत्तलात ने बग़ैर शदीद ज़रूरत के किसी भी मुलाजिम को बैरून मुल्क के दौरे के लिए नामजद नहीं करने के लिए अपने मातहत के महकमों और दफातर को हिदायत की है। वज़ीर आज़म और काबीना दफ्तर ने तमाम वजारतों कमिश्नर और सेक्रेटरीट के नाम सर्कुलर जारी करके आइंदा 3 महीनों के लिए किसी भी मुलाजिम को बैरून मुल्क के दौरे के लिए नामजद नहीं करने की हिदायत की थी। बैरून मुल्क के दौरे में भेजने की ज़रूरत आन पड़ने पर वजारत के साथ मशावरत करके वज़ीर आज़म और काबीना दफ्तर से पेश की मंजूरी लेने के लिए वजारत नशरियात की इंतजामी और तरक्याती तावन यकजहती शाख के अफसर विशाल भंडारी ने मातहत के महकमों के नाम सर्कुलर जारी किया है। हुकूमत ने वजारतों की तादाद में रद्दोबदल करने के साथ ही संघ दरबार में वजारतों के पुराने नाम मस्ख करके नए नाम लिखने का काम शुरू हो गया है। हुकूमत ने हुकूमत नेपाल के जिम्मेदारियों की तकसीम से मुतालिक जवाबी 2083 को मंजूर करके सरकारी गजट में शाये करने के बाद वजारतों की तादाद 22 से कम होकर 18 हो गई है। हुकूमत ने जिम्मेदारियों के तकसीमी जवाबित के जरिए साबका 8 वजारतों को जू का तू रखा है, जबकि चंद वजारतों को आपस में जम किया है तो एक नई वजारत के तौर पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी व इख्तरा कायम की है। साबका वजारत शबाब और खेल, वजारत आबी नोश और वजारत शहरी तरक्यात की इमारतों को खाली किया जा रहा है। यह वजारतें किसी भी वजारत के साथ जम नहीं हुई हैं और ना ही इनके नामों को तब्दील किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शिशिर खनाल ने कहा है कि क़लील मुद्दती सियासत से ज़्यादा तवील मुद्दती मनसूबा पर मकामी हुकूमत को मरकूज़ रहना चाहिए। काठमांडू के टोखा नगर पालिका के जरिए आज अहतमाम करदा माली साल 2083-84 की पॉलिसी प्रोग्राम और बजट का मसवदा तैयार करने की गर्ज से तजावीज़ और मशवरे जमा करने के प्रोग्राम में वज़ीर खनाल ने कहा कि मकामी सतह को तवील मुद्दती मनसूबों पर मरकूज़ होना चाहिए। प्रोग्राम में बोलते हुए वज़ीर खनाल ने इस बात का तज़किरा किया कि टोखा नगर पालिका के इलाके को मुनज़्ज़म शहर बनाने और तारीखी नेवारी बस्ती और सनीचर को लगने वाले बाजार को मुनज़्ज़म बनाते हुए सियाहत को फ़रोग देने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सियासी मफाद से बालातर होकर काम करने का वक्त आ गया है। तवानाई और फराहमी के सिलसिले की मज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए आलमी बरादरी ने इकदाम करने पर नेपाल ने ज़ोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की माशी और समाजी कौंसिल के मखसूस इजलास से आडियो वीडियो के ज़रिए गुज़श्ता जुमा को ख़िताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शिशिर खनाल ने इस बात पर ज़ोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए न्यूयॉर्क वाक़ई नेपाली मुस्तक़िल मिशन के मुताबिक वज़ीर खनाल ने आलमी तवानाई और फराहमी के सिलसिले को दरपेश मज़ाहमत और उसकी वजह से पायदार तरक्यात पर मुरतब हो रहे असरात के बारे में अपने ख़िताब में कहा कि मग़रब एशियाई कशीदगी से नेपाल भी मुतासर हुआ है।
آج دنیا بھر کے مختلف ممالک میں مواصلاتی اور اطلاعاتی سماج کا عالمی دن مختلف پروگراموں کا اہتمام کر کے منایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور نشریاتی اطلاعاتی ٹیکنالوجی ICT کے استعمال کے ذریعے سماج اور معیشت میں لائی جا سکنے والی مثبت تبدیلی سے متعلق بیداری پھیلانے اور ڈیجیٹل تقسیمی میں کمی لانے کے مقصد سے ہر سال مئی 17 کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی MLA کا آج کے لیے طے شدہ سیکرٹریٹ اجلاس اب پرسوں ہوگا۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی MLA کے مرکزی دفتر کے سیکرٹری ڈاکٹر بھیشما ادھیکاری نے بتایا کہ پارٹی کے رہنماؤں کی مشغولیت کے باعث آج اجلاس نہیں ہو سکا ہے اور پرسوں پارٹی کے صدر KP شرما اولی کی گنڈو واقع ذاتی رہائش گاہ میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں تازہ ترین سیاسی موضوعات سمیت عوام سے وابستہ موضوعات پر بھی بات چیت ہوگی۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی MLA نے پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل مدن کمار بھنڈاری اور تنظیمی شعبہ کے چیف جیوراج آشرت کی 33 برسے کے موقع پر آج ملک بھر میں میموریل ڈے کے ساتھ مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا ہے۔ عوامی رہنما بھنڈاری اور رہنما آشرت کا بکرمی سمت 2050 سال جیٹ 3 گتے چیتون کے داس ڈھونگا میں سواری حادثے میں پڑ کر انتقال ہو گیا تھا۔ عوامی رہنما مدن بھنڈاری اور رہنما جیوراج آشرت کی 33 برسے کے موقع پر سابقہ صدر مملکت ودیا دیوی بھنڈاری نے ان کے تئیں دلی خراج عقیدت پیش کی۔ اسی طرح نیپال کمیونسٹ پارٹی MLA کے صدر KP شرما اولی نے بھی عوامی رہنما مدن بھنڈاری اور رہنما جیوراج آشرت کی برسی کے موقع پر ان کے تئیں اعلی احترام کے ساتھ دلی خراج عقیدت پیش کی ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کے نام کا غلط استعمال کر کے سرکاری ملازم کو دھمکی دینے اور ڈر اور خوف پیدا کرنے اور نازیبہ الفاظ کا استعمال کرنے والا شخص پولیس کی گرفت میں آ گیا ہے۔ ضلع پولیس سرکل کاٹھمنڈو کے ترجمان SP پون بھٹرائی نے بتایا کہ ضلع پولیس کی ایک ٹیم نے آج سرخیت کے کاٹھمنڈو کے سنکھمول میں رہنے والا 22 پرکاش کھڑکا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم اور کابینہ دفتر سے بات کرنے کا حوالہ دے کر دہلک کی دلو نگر پالیکا وارڈ نمبر 13 کے وارڈ سیکرٹری کمل بھنڈاری کو فون پر دھمکی دینے کی آڈیو منظر عام ہوئی تھی۔ چیتون میں جنگلی مشروم کھانے سے مرنے والوں کی تعداد 2 پہنچ گئی ہے۔ مرنے والوں میں 6 کامنہ گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 کولبانگ کی 9 نمونہ چیپنگ اور 11 سنجے چیپنگ شامل ہیں۔ ضلع پولیس دفتر کے DSP رویندر کھنال کے مطابق نمونہ کی اسی جیٹ ایک گتے موت ہو گئی تھی تو سنجے کی گزشتہ رات علاج کے دوران موت ہوئی ہے۔ گزشتہ بیساکھ 29 گتے جنگلی مشروم کھا کر بیمار پڑنے والوں میں سے 13 منیتا چیپنگ کا اس وقت بھرتپور اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ DSP کھنال کے مطابق منیتا کی حالت نازک ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह 32 वीर सगरमाथाके सफल आरोहण केने कामी रीता शेर्पा आ 11 वीर सगरमाथा आरोहण केनिहार लाक्पा शेर्पाके बधाई तथा उच्च सम्मान व्यक्त कयलनि अछि। सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत प्रधानमन्त्री शाह आरोही सबके ई सर्वोच्च सफलतासँ नेपालके पर्वतीय पर्यटनके आर विश्वसनीय गौरवपूर्ण आकर्षक बनबैत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमे नेपालके पहिचानके आर निक बनेबाक विश्वास लेने बतौलनि। शेर्पा आइ भिनसर 10:12 सगरमाथाके 32 वीर सफल आरोहण करैत अपन विश्व कीर्तिमान पुनः नवीकरण कयलनि अछि। सङ्गी माउन्टेन क्वीनके रूपमे परिचित लाक्पा शेर्पा आइ भिनसर 9:30 11 बेर सगरमाथा आरोहण करैत महिला आरोही मध्ये सबसँ अधिक बेर सगरमाथा आरोहण केनिहार विश्व कीर्तिमान कायम कयलनि अछि। निरन्तरके अदम्य साहस कठोर आत्मानुशासन आ कर्मप्रतिके ईमानदार समर्पणसँ मात्र एहन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होइत अछि कहिक प्रधानमन्त्री शाह खुशीके क्षणके सब गोटे सङ्ग साझा करैत दुनू गोटे आरोहीमे हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। आर्थिक वर्ष 2092-93 धरि खाना बनाबयवला LPG ग्यासके अनुदान खारिज कऽ विद्युतीय चूल्हिमे अनुदान उपलब्ध करेबाक योजनाके सङ्ग सरकार ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 सार्वजनिक कयलक अछि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय आम जनताके सुझावके लेल सार्वजनिक केने ई रणनीति खाना बनाबयवला LPG ग्यासके उपयोग क्रमशः घटबैत न्यून करबाक लक्ष्य रखने अछि। विद्युतीय चूल्हिमे अनुदान देबाक आ स्वच्छ ऊर्जाके खपत बढ़ेबाक लक्ष्यके सङ्ग सरकार रणनीति सार्वजनिक केने मन्त्रालय जनौलक अछि। भन्सार विभागके हिसाबे चालू आर्थिक वर्षके 9 महिनामे 41.65 अरब बराबरी खाना बनाबयवला ग्यासके आयात भेल अछि। एहि अवधिमे 41 लाख मैट्रिक टन गैस आयात भेल अछि। गत आर्थिक वर्ष 2081-82 कुल 62.58 अरब बराबरी गैस आयात भेल छल। एहि आर्थिक वर्षमे 55 लाख मैट्रिक टन गैस आयात भेल छल। एहिना आर्थिक वर्ष 2080-81 55 अरब बराबरी गैस आयात भेल छल। महालेखा परीक्षकके कार्यालय सार्वजनिक निकायके जवाबदेहिता पारदर्शिता निष्ठा प्रवर्धन करैत सार्वजनिक स्रोत साधनके मित व्ययी तथा टिकाउ उपयोग सुनिश्चित करबाक लेल क्षेत्रगत सुझाव देलक अछि। महालेखा परीक्षकके 63 वार्षिक प्रतिवेदनमे शासकीय प्रबन्ध अर्थतन्त्र सार्वजनिक वित्त आ विकास व्यवस्थापन सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रविधि सार्वजनिक प्रशासन आ सुशासन क्षेत्रमे सुधार करबाक लेल सरकारके सुझाव देलक अछि। महालेखा सार्वजनिक प्रशासनमे सूचना प्रविधिके कार्य सम्पादन सङ्ग आबद्ध कऽ फेसलेस ब्यूरोक्रेसी विद्युतीय शासन आ एकल सेवा केन्द्रके अवधारणाके कार्यान्वयनमे आणके सुझाव देलक अछि। विशिष्टीकृत कार्यके लेल कार्य समयमे लचकता उपयुक्त प्रोत्साहन सहित 1 से अधिक कार्यालयके जिम्मेवारी देल जा सकबाक व्यवस्था मिलाबा सुझाव दैत महालेखा सेवाग्राही प्रति शिष्ट मर्यादित आ जवाबदेही सेवा संस्कृति स्थापित करबाक लेल स्पष्ट आचार संहिताके कार्यविधि तर्जुमा कऽ लागू करबाक लेल सिफारिश कयलक अछि। सेवा प्रवाहके प्रभावकारी बनाबा नागरिक सचेतना अभिवृद्धि करबाक आ नियमित पृष्ठपोषण प्राप्त करबाक संयंत्र विकास करबाक लेल आ सेवाग्राहीके समय आ लागतके ध्यानमे राखि सेवा डिजाइन करबाक चाही तथा प्रमाण योग्य कागजके प्रारम्भिक प्रशोधन निःशुल्क करबाक लेल महालेखा सुझाव देलक अछि। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयके सचिव एवं राष्ट्रिय सड़क सुरक्षा परिषदके अध्यक्ष गोपाल प्रसाद सिगदिल सड़क सुरक्षा केवल ट्रैफिक प्रहरीके मात्र जिम्मेवारी निभा प्रत्येक नागरिकके दैनिक व्यवहार सङ्ग जोड़ल गेल विषय भेल बतौलनि। विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताहके अवसर पर आयोजित कार्यक्रममे ओ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणके लेल कानून कार्यान्वयन सङ्गे जनचेतना अभिवृद्धि करबाक सेहो अपरिहार्य रहल बतौलनि। काठमाण्डू उपत्यका प्रहरी कार्यालयके प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्की सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अभियान के समुदाय स्तर में विस्तार कालजबाक बतौलनि। ओ ट्रैफिक व्यवस्थापन में नागरिक के सहकार्य अपरिहार्य रहल चर्च करैत सबके जिम्मेवार अनुशासित सड़क प्रयोगकर्ता बनल लेल आग्रह सेहो कयलनि।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी अगुवाईमी विश्व सडक सुरक्षा सप्ताह 2026 अन्तर्गत आयोजन चेतनामूलक कार्यक्रम कयल गेल अछि। सडक दुर्घटनाके न्यूनीकरण करबाक लेल आइ वीरगंजकी माईस्थान घंटाघर क्षेत्रमे जनचेतनामूलक कार्यक्रम कयल गेल अछि। जिला ट्राफिक कार्यालयके प्रमुख युवराज कटवाल सवारी दुर्घटनाके न्यूनीकरण करैत साइकिल यात्री तथा रिक्शा चालककेँ लक्षित का जनचेतनामूलक कार्यक्रम कयल गेल बतौलन। एहि कार्यक्रम में वाड़ा के प्रहरी कार्यालय वीरता श्रीपुर आ वीरगंज युवा समाज के समन्वय में सचेतनामूलक कार्यक्रम में उसब सहभागी भेल छलथि। जनकपुर उच्च अदालत चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 के बैसाख धरि 3115 मुद्दा फरचोट कैलक अछि। पुरान आ नया का जमा 5651 मुद्दा अदालत में रहल अछि। उच्च अदालत के शाखा अधिकृत गणेश पांडे के हिसाबे फरचोट भेल मुद्दा मध्य अगला वर्ष आयल 2267 आ नया दर्ता भेल 3384 सहित 5651 मुद्दा अदालत में रहल अछि। हुनक हिसाबे 2536 मुद्दा फरचूट हेबा लेल अखनो बाकी रहल अछि। गुठी संस्थान संग जिलागत जमीन के अभिलेख नहि रहल महालेखा परीक्षक के 63 प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। अभिलेख नहि भेल जमा जमीन के क्षेत्रफल यकीन होबर नहि सकल महालेखा परीक्षक के कार्यालय के 63 प्रतिवेदन के सारांश में लिखल गेल अछि। संस्थान के नाम में रहल जमीन तथा संपत्ति के एकीकृत कार्यालयगत अभिलेख तैयार कर जमीन के संरक्षण आ उपयोग करबाक व्यवस्था मिलावा सुझाव देल गेल अछि। संस्थान में रहल जमीन मध्य धनसा जिला में 43.5 बीघा, महतरी में 122 बीघा, बाड़ा में 27 बीघा, परसा में 7 बीघा तथा काठमांडू में 14 रोपनी, ललितपुर में 12 रोपनी आ भक्तपुर में 2 रोपनी जमीन अतिक्रमण भेल प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। संस्थान अइ सम्पूर्ण लगत तैयार नहि केने, तैयार करबाक लेल अन्य जिला में अतिक्रमण भेल जमीन के एकीकृत तथा अध्यावधिक लागत तैयार कऽ अतिक्रमित जमीन के संरक्षण करय पड़त। संस्थान कार्यव्यवस्था विनियम 2049 के 17 के 1 बमोजिम अधिकार क्षेत्र भीतर के जमीन संबंधी अलगे लगत तैयार कर अद्यावधिक करबाक व्यवस्था अछि। संस्थान बीतल 68 जिला अंतर्गत पहाड़ में 5,61,990 रोपनी आ तराई में 66,320 बीघा जमीन गुठी के नाम में रहल प्रतिवेदन में उल्लेख रहल अछि। महतरी के 2 ठाम पुरुषोत्तम मेला शुरुआत भेल अछि। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के सप्तमी संगे आइ सँ शुरू भेल अधिक मास संगे जिला के लोहारपट्टी वार्ड नंबर 4 पिपराढ़ी आ सोनमा वार्ड नंबर 5 राम जानकी गेरुका धाम में पुरुषोत्तम मेला शुरू भेल अछि। गेरुका रंग के थाल निकल वाला नदी के दह रहल ठाम तथा जल प्रवाह में पुरुषोत्तम स्नान के हिंदू मैथिल परंपरा अछि। अधिक मास के पुरुषोत्तम मास आ बोली चाली के भाषा में मलमास सेहो कहल जाते अछि। यह चलन सँ धार्मिक मेला के मलमास मेला सेहो कहल जाते अछि। अधिक मास के रवि दिन आ मंगल दिन पुरुषोत्तम मेला स्नान के मैथिल परंपरा अछि। एहि हिसाबे अधिक मास शुरू भेल पहिल दिने रवि दिन पड़लाक बाद दुनू ठाम आइए धार्मिक मेला स्नान शुरू भेल अछि। गेरु रंग के थाल वा पानि भेल ठाम में स्नान के परंपरा भेला सँ एहि के गेरुका स्नान आ मेला के ठाम के गेरुका धाम कहल जाते अछि। जिला के राजविराज नगर पालिका वार्ड नंबर 15 में निर्माणाधीन रहल शीत भंडार 5 वर्ष सँ असमंजस के अवस्था में भेलाक बाद बीज लाग के बिगड़ के अवस्था में पहुँचल अछि। ठेकेदार कंपनी शीत भंडार के काज के आधा अधूरा अवस्था में छोड़ कर 5 वर्ष बीत चुकलाक बादो काज पुनः शुरू होबय नहि सकल अछि। 3,000 मैट्रिक टन क्षमता भेल निर्माणाधीन शीत भंडार के लोहा में बीज लाग के बिगड़ के अवस्था में पहुँचल स्थानीय वासी सब के कहब छन। तत्कालीन मध्य सरकार 8 जिला में 1-1 शीत भंडार निर्माण करबाक योजना हिसाबे हनुमान नगर सड़क खंड संग जोड़ल गेल राजविराज नगर पालिका वार्ड नंबर 15 में नगर पालिका 1 बीघा जमीन उपलब्ध करा कर निर्माण केने शीत भंडार के काज रोकायल अधूरा भेलाक बाद अखन धरि संचालन होबय नहि सकल। स्थानीय सरस्वती यादव बतौलन जिला में शीत भंडार नहि भेला सँ एहि क्षेत्र के किसान के उत्पादन कयल गेल सामग्री भंडारण करबाक लेल समस्या होइत आयल। स्थानीय बौए लाल यादव एहि के जानकारी देल नहि छै। नेपाल में स्वीकृत विदेशी लगानी के तुलना में वास्तविक आवय वाला रकम अत्यंत न्यून रहल अछि। महालेखा परीक्षक के कार्यालय के 33वां वार्षिक प्रतिवेदन के हिसाबे आर्थिक वर्ष 2081-82 में 1009 विदेशी लगानीकर्ता सँ 79.69 अरब बराबरीक लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भेल छल। जाहिमे जमा 97 लगानीकर्ता सँ मात्र 11.30 अरब मात्र आयल अछि। ई स्वीकृत लगानी के
14% रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नया अध्ययन सँ जलवायु परिवर्तन के कारण विश्वभर के नदी में ऑक्सीजन के मात्रा निरंतर घटि रहल देखलक अछि, जाहि सँ ताजा पानि के लेल गंभीर जोखिम सृजना कयलक अछि। ई अध्ययन साइंस एडवांसेस नामक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित भेल अछि। अनुसंधान चीनिया विज्ञान प्रतिष्ठान अंतर्गत नानजिंग भूगोल तथा लिम्नोलॉजी संस्थान के अनुसंधानकर्ता के नेतृत्व में कयल गेल अछि। अनुसंधान टोली सन 1985 से 2023 धरि के लगभग 40 वर्ष के तथ्यांक विश्लेषण कयने छल। अध्ययन में विश्वभर के 21,000 से अधिक नदी खंड के ऑक्सीजन स्तर मापन कयला पर उन्नत कंप्यूटर पर आधारित विश्लेषण विधि प्रयोग कयल गेल छल। अध्ययन हिसाबे नदी में ऑक्सीजन के मात्रा औसत में प्रति दशक 0.045 मिलीग्राम प्रति लीटर के दर से घट रहल अछि। अध्ययन कयल गेल लगभग 80% नदी में ऑक्सीजन कमी देखल गेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास सँ सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने की ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 सार्वजनिक। आर्थिक वर्ष 2092-93 तक एलपी गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त करने की है योजना। कामिलिता शेरपा ने 32वीं बार किया सगरमाथा का सफल आरोहण। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पर्वतारोहण इतिहास में शेरपा समुदाय के योगदान को बताया असाधारण। और कांगो में फैले इबोला प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 सार्वजनिक की है। आर्थिक वर्ष 2092-93 तक खाना पकाने में उपयोग होने वाली एलपी गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर विद्युतीय चूल्हों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना के साथ सरकार ने ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 सार्वजनिक की है। ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विद्युतीय चूल्हों पर सब्सिडी देने और स्वच्छ ऊर्जा की खपत बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ये रणनीति सार्वजनिक की गई है। विदेश से प्राप्त विप्रेषण की बड़ी राशि हर वर्ष खाना पकाने वाली गैस पर खर्च होने की प्रवृत्ति को रोककर धन बचाने और उसे देश के भीतर ही बनाए रखने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 तैयार की है। इस कार्य के लिए उद्योग मंत्रालय को जिम्मेवार निकाय निर्धारित किया गया है। अर्थ मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय आवश्यक समन्वय कर आर्थिक वर्ष 2092-93 तक इसे पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने 32वीं बार सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफल आरोहण करने वाले कामिलिता शेरपा और 11वीं बार एवरेस्ट आरोहण करने वाले लाखपा शेरपा को बधाई देते हुए उनके प्रति उच्च सम्मान व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि पर्वतारोहियों की ये सर्वोच्च सफलता नेपाल के पर्वतीय पर्यटन को और अधिक विश्वसनीय, गौरवपूर्ण तथा आकर्षक बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेपाल की पहचान को और उज्ज्वल बनाएगी। उन्होंने लिखा है कि हिमालय को ईश्वर की तरह पूजने वाले, जोखिम को जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करने वाले और विश्व भर के पर्वतारोहियों को सुरक्षित रूप से शिखर तक पहुंचाने वाले शेरपा वास्तव में हिमालय के अदृश्य नायक हैं। कामिलिता शेरपा ने आज सुबह 10:12 पर 32वीं बार सफल एवरेस्ट का आरोहण कर अपना ही विश्व कीर्तिमान पुनः नवीनीकृत किया। इसी तरह माउंटेन क्वीन के नाम से प्रसिद्ध लाखपा शेरपा ने आज सुबह 9:30 पर 11वीं बार एवरेस्ट आरोहण कर महिला पर्वतारोहियों में सबसे अधिक बार एवरेस्ट चढ़ने का विश्व कीर्तिमान कायम किया। इसी तरह सशस्त्र प्रहरी संगठन की ओर से सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार अनिता कार्की और सहायक निरीक्षक निम डिक्की शेरपा ने भी आज सुबह सर्वोच्च शिखर सगरमाथा का सफल आरोहण किया। चितवन में जंगली मशरूम खाने से मृत्यु होने वालों की संख्या 2 पहुंच गई है। चितवन की इच्छा कामना गौपालिका 1 कुलबांग के 2 लोगों की मृत्यु हुई है। मृतकों में 9 वर्षीय नमूना चेपांग और 11 वर्षीय संजय चेपांग शामिल हैं। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनाल के अनुसार नमूना की मृत्यु जेठ 1 गते हुई थी, जबकि संजय की शनिवार रात उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वैशाख 29 गते श्याम बहादुर चेपांग के 5 सदस्यीय परिवार ने जंगली मशरूम खाए थे। इनमें से 3 लोग जेठ 1 गते बीमार पड़ने के बाद उपचार के लिए भरतपुर अस्पताल लाए गए थे। उपचार के दौरान नमूना की मृत्यु हो गई थी। 13 वर्षीय मनिता चेपांग का इलाज भरतपुर अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि बीमार मनिता की हालत गंभीर बनी हुई है। महालेखा परीक्षक की 63वीं प्रतिवेदन से पता चला है कि गुठी संस्थान के पास जिलावार भूमि का अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अभिलेख न होने के कारण कुल भूमि क्षेत्रफल का सही निर्धारण नहीं हो सका है। ये जानकारी महालेखा परीक्षक कार्यालय ने दी है। महालेखा ने सुझाव दिया है कि संस्थान के नाम पर मौजूद भूमि तथा संपत्तियों का एकीकृत और कार्यालयीय अभिलेख तैयार कर भूमि संरक्षण एवं उपयोग की व्यवस्था की जाए। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि संस्थान की भूमि में धनुषा जिले में 43.5 बीघा, महोत्तरी में 122 बीघा, बारा में 27 बीघा, परसा में 7 बीघा और काठमांडू में 14 रोपनी यानी करीब 21.5 कट्ठा, ललितपुर में 12 रोपनी और भक्तपुर में 2 रोपनी भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा है कि पार्टी के विशेष महाधिवेशन से बाहर रह गए नेताओं को साथ लेकर काम करना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक विचार समाज के स्थापना दिवस के अवसर पर आज आयोजित समसामयिक राजनीति में नेपाली कांग्रेस की भूमिका विषयक कार्यक्रम में सभापति थापा ने कहा कि विशेष महाधिवेशन से छूटे नेताओं को केंद्रीय समिति तथा अन्य समितियों में शामिल किया जाएगा। सभापति थापा ने कहा, पार्टी के 14वें महाधिवेशन से निर्वाचित नेताओं की एक बड़ी पंक्ति बाहर है। जो नेता 14वें महाधिवेशन से निर्वाचित होकर भी मेरी समिति में नहीं है, उन्हें मैं वर्तमान केंद्रीय समिति में सम्मान के साथ लाना चाहता हूं। जिन्हें वरिष्ठ नेता बनना चाहिए, उन्हें वरिष्ठ नेता बनाया जाएगा। जिस स्थान पर रखकर संभव होगा, मैं उन्हें साथ लेकर काम करना चाहता हूं। नेकपा एमाले ने पार्टी के तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भंडारी और संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित के 33वें स्मृति दिवस के अवसर पर आज देश के विभिन्न हिस्सों में स्मृति सभाओं सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मदन नगर बलखो में स्मृति कार्यक्रम में दिवंगत नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि नेता भंडारी और आश्रित का विक्रम संवत 2050 साल के जेठ 3 गते चितवन के दासढुंगा में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। विगत लंबे समय से भूमिहीन सुकुमवासी के रूप में रह रहे धनुषा की मिथिला नगर पालिका के 483 परिवारों को आज एक समारोह के बीच लालपुर्जा यानी भूमि स्वामित्व का पेपर वितरित किया गया। मिथिला नगर पालिका वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 के भूमिहीन सुकुमवासियों को लालपुर्जा प्रदान किया गया है। गांव ब्लॉक की जमीन बिना लालपुर्जा के उपयोग कर रहे सुकुमवासियों को लालपुर्जा वितरित किया गया है। ये जानकारी जिले स्थित नापी कार्यालय नंबर 2 टोली ढलकेवर ने दी। उनके अनुसार टोली के कार्यालय में 658 लोगों ने लाल पुर्जा के लिए आवेदन दिया था। इससे पहले भी इस टोली ने पालिका के वार्ड नंबर 1, 6 और 7 के 64 भूमिहीन सुकुमवासी परिवारों को सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लाल पुर्जा वितरित किया था। बेनीघाट आरुघाट लारके सड़क खंड अंतर्गत गोरखा के नौली नहर पर पक्के पुल का निर्माण किया गया है। 4,36,00,000 रुपए की लागत से 36 मीटर लंबा पुल बनने के साथ ही इस क्षेत्र में चलने वाले वाहनों और नागरिकों के आवागमन में सुविधा हुई है। ये जानकारी पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखा के प्रमुख संतोष अरियाल ने दी। धारचे गांवपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुंग के अनुसार, पहले नहर पर पुल न होने के कारण धारचे गांवपालिका केंद्र और चुमनुबरी गांवपालिका जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी इतुरी प्रांत में इबोला फैलने से कई मौतें हो गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO ने कहा कि इससे लगभग 246 संदिग्ध मामले और 80 मौतें दर्ज हुई हैं, लेकिन यह वैश्विक महामारी आपातकाल की कैटेगरी में नहीं आती। WHO के डायरेक्टर जनरल ने चेतावनी दी कि अभी संक्रमित लोगों की सही संख्या और इस बीमारी के फैलने को लेकर काफी अनिश्चितता है। WHO ने बताया कि इस बार का इबोला बुंडी बुग्यो वायरस से हुआ है, जिसके लिए दवा या टीका नहीं है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि वायरस कांगो से बाहर भी फैल चुका है और पड़ोसी युगांडा में 2 मामले मिले हैं। युगांडा अधिकारियों ने कहा है कि 59 साल के एक व्यक्ति की गुरुवार को मौत हुई और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस वायरस को कांगो के पड़ोसी देशों को ज्यादा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि यहां लोगों की आवाजाही, व्यापार और यात्रा ज्यादा होती है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने की ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 सार्वजनिक। आर्थिक वर्ष 2092-93 तक LP गैस पर दी जा जाने वाली सब्सिडी समाप्त करने की है योजना। कामिलिता शेरपा ने 32वीं बार किया सगरमाथा का सफल आरोहण। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पर्वतारोहण इतिहास में शेरपा समुदाय के योगदान को बताया असाधारण। और कांगो में फैले इबोला प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी एलटीई मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: मनोरञ्जन र विविध जानकारी सँगै यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला।
6: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट सिलसिला
5: सिलसिला।
6: रेडियो पत्रिका सिलसिलामा प्राविधिक मित्र पराग पोखरेल सहित साथी मनुका कुमार अनि म हरिगिरीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। रेडियो पत्रिका सिलसिला हरेक आइतबार बिहान 11 बजेको समाचार पछि र यसका साथै आइतबारै राति 10 बजेको हिन्दी भाषाको समाचार पछि पुनः प्रसारणमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट साप्ताहिक रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न सेगमेन्टहरू रेडियो पत्रिका सिलसिलामा हुनेछन्। अझ भनौ, खोजमूलक सामग्रीको आधारमा यो कार्यक्रमलाई हामीले तयार पारेका हुन्छौ।
5: कार्यक्रममा हामीले मनोरञ्जनका लागि गीत, विज्ञान उपयोगी सामग्री, स्वास्थ्य चर्चा, सामान्य ज्ञानका जानकारी, प्रेरक एवं रोचक प्रसङ्ग लिएर आउने गर्दछौ। कार्यक्रममा समावेश हुने सामग्री विभिन्न सञ्चार माध्यम, अनलाइन समाचार एजेन्सी र न्यू मिडियाबाट साभार स्रोत हुनेछन्।
6: त्यसैले यो कार्यक्रमलाई पूरा समय सुन्नका लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौ।
5: रोचक र ज्ञानवर्धक सामग्रीको संगालो, यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला।
6: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालमा सिलसिला
5: सिलसिला।
6: अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ। अब यहाँहरूमा राख्दैछौ विभिन्न विज्ञान उपयोगी प्रसङ्गहरू। मौसमको भविष्यवाणी कसरी गरिन्छ, अब यो बारेमा जानकारी दिँदैछौ। मौसम भविष्यवाणी एउटा जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, जसमा वायुमण्डलको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरेर भविष्यमा कस्तो मौसम हुन्छ भनेर अनुमान लगाइन्छ। यसका लागि मुख्यतया यी चरणहरू अप्नाउने गरिन्छ, जस्तो कि तथ्याङ्क संकलन। सबैभन्दा पहिले जमिन, समुद्र र आकाशबाट मौसम सम्बन्धी जानकारीहरू जम्मा गरिन्छ। यसका लागि विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को मौसम स्टेशनहरू। जमिनमा रहेका स्टेशनहरूले तापक्रम, वायुको चाप, आर्द्रता र हावाको गति नाप्दछन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ वेदर भेलुन, यिनले आकाशको माथिल्लो तहको मौसमी अवस्थाको जानकारी पठाउँछन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ स्याटेलाइट, अन्तरिक्षबाट खिचिएका तस्विरहरूले बादलको बनावट र चक्रवातको गति पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछन्। अनि मौसम भविष्यवाणी गर्नका लागि अर्को यन्त्र हो राडार, यसले वर्षा कहाँ भइरहेको छ र कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने कुराको सटिक जानकारी गराउने गर्दछ। त्यस्तै गरी संख्यात्मक मौसम भविष्यवाणीको आधारबाट पनि मौसमको भविष्यवाणी पत्ता लगाइन्छ। संकलन गरिएका सबै तथ्याङ्कहरूलाई शक्तिशाली सुपर कम्प्युटरमा राख्ने गरिन्छ। यी कम्प्युटरहरूले भौतिक शास्त्रका जटिल गणितीय सूत्रहरू प्रयोग गरेर वायुमण्डलमा आउन सक्ने परिवर्तन हिसाब गर्दछन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ विश्लेषण र मोडलिङ, कम्प्युटरले निकालेको नतिजालाई मौसमविदहरूले विश्लेषण गर्ने गर्दछन्। कहिलेकाहीँ फरक फरक कम्प्युटर मोडलहरूले फरक फरक नतिजा पनि देखाउन सक्दछन्। यस्तो अवस्थामा विज्ञहरूले आफ्नो अनुभव र स्थानीय भौगोलिक अवस्था, जस्तै नेपालको हकमा हिमाल, पहाड र तराईको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछन्। त्यस्तै मौसम भविष्यवाणी गर्नका लागि अर्को प्रविधि हो सूचना सम्प्रेषण। अन्तिममा तयार भएको रिपोर्टलाई सर्वसाधारण, किसान, उड्डयन क्षेत्र र आपतकालीन सेवाहरूका लागि जारी गरिन्छ। नेपालमा यो काम जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गर्ने गर्दछ।
5: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम सिलसिला। विज्ञान उपयोगी सामग्री समेट्ने क्रममा अबको लागि अमिलो खानेकुराले मुखमा रियाल किन आउँछ यो प्रसङ्ग राख्दैछौ। हाम्रो मुखभित्र 3 जोडी रियालका ग्रन्थीहरू हुन्छन्। 1 जोडी कान्नेर, 1 जोडी जिब्रो मुनि र अर्को तल्लो बङ्गरा मुनि रहन्छन्। यी ग्रन्थीहरूले मुखबाट रियाल वा थुक निकाल्ने गर्दछन्। वास्तवमा यी ग्रन्थीहरू हाम्रो पाचन प्रणालीसँग सम्बद्ध अङ्ग हुन्। र्यालमा यसरी खानेकुरालाई टुक्र्याउने र चिल्लो पार्न रसहरू हुन्छन्। अब प्रश्न उठ्छ कि कसरी खाँदै नखाए पनि र्याल आउँछ त? जस्तो कि अमिलोको प्रसङ्ग उठाउँदा मात्र पनि मुखमा पानी भरिएर आउँछ कि कसो? खास कारण के हो भने यी र्यालका ग्रन्थीहरू यान्त्रिक तरिकाबाट सञ्चालन हुँदैनन्। यिनीहरूको मस्तिष्कसँग सिधा सम्पर्क रहेको हुन्छ। यस कारण मस्तिष्कले कुनै कुराको अनुभूति पाएपछि त्यसको असर ग्रन्थीमा पर्दछ र त्यसबाट रस पैदा हुन्छ। वैज्ञानिकहरू के भन्छन् भने मस्तिष्कमा हुने विभिन्न प्रतिक्रियाले र्यालका ग्रन्थीहरूको मांस पेशी थिच्न पुग्दछ र र्याल निस्किन्छ। यसलाई प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया पनि भनिन्छ।
6: अब यहाँहरूमा राख्दैछौँ अर्को प्रसङ्ग, हाम्रो दाँत केले बनेको हुन्छ। अब यो बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। हाम्रो दाँत शरीरको सबैभन्दा बलियो र कडा भाग हो। धेरैलाई दाँत हड्डी जस्तै लागे पनि यो पूर्ण रूपमा हड्डी भने होइन। दाँत मुख्यतया चार प्रकारका तन्तुहरू मिलेर बनेको हुन्छ, जस्तो कि एउटा हो इनामेल। यो दाँतको सबैभन्दा बाहिरी र सेतो भाग हो। यो मानव शरीरको सबैभन्दा कडा पदार्थ हो। यसले दाँतलाई चपाउँदा हुने घर्षण र तातो चिसोबाट जोगाउने कार्य गर्दछ। यसमा मुख्यतया हाइड्रोक्सिप भनिने क्याल्सियम फस्फेटको खनिज रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो डेन्टिन। इनामेलको ठिक मुनि डेन्टिन हुन्छ। यो हड्डी जस्तै कडा हुन्छ तर इनामेल जति कडा हुँदैन। यसमा ससाना नलीहरू हुन्छन् जसले दाँतको भित्री नसासम्म संकेत पुर्याउने कार्य गर्दछ। जब इनामेल खिइन्छ यही डेन्टिन खुला हुनाका कारण दाँत सिरिङ्ग हुने गर्दछ। अर्को रहेको छ सिमेन्टस। यसले दाँतको जरालाई छोपेको हुन्छ। यसको मुख्य काम दाँतलाई गिजा र चिउँडोको हड्डीसँग दह्रो गरी जोडेर राख्नु हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ पल। यो दाँतको सबैभन्दा भित्री र नरम भाग हो। यसमा रगतका नलीहरू र रहेका हुन्छन्। यसैले दाँतलाई पोषण दिने र तातो चिसो वा दुखाइको महसुस गराउने काम गर्दछ। त्यस्तै दाँतमा मुख्य गरी क्याल्सियम फस्फोरस र फ्लोराइड रहेका हुन्छन्। क्याल्सियमको काम दाँतको मजबुतीका लागि हो भने फस्फोरसको काम क्याल्सियमसँग मिलेर दाँतको संरचना बनाउन सहयोग गर्नु हो। त्यस्तै फ्लोराइडको काम इनामेललाई मजबुत बनाउन र किरा लाग्नबाट बचाउनु हो। अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ।
5: अब प्रसङ्ग छ करेला खाँदा किन तितो हुन्छ भन्ने बारे। करेलालाई तितोपना प्रदान गर्ने कार्य पातले सुरु गर्दछ, अर्थात् करेला फुल्दै पातले करेलामा तितोपना बढाउन सुरु गर्दछ। करेला जति हरियो देखिन्छ उति नै बढी तितो हुन्छ। मुख्यतया करेलामा दुई किसिमको रसायन हुन्छ। यी दुई कुकुरबिटासिन र ग्लाइकोसाइडको मातहतमा एक विशिष्ट प्रकारको तत्व मोमोरडिकोसाइड रहेको हुन्छ। यही मोमोरडिकोसाइडको कारणले गर्दा करेला खाँदा हामीलाई तितो अनुभव हुन्छ। करेला हरेक प्रकारका रगतका रोगीहरूका लागि उपयोगी हुन्छ। नियमित करेला खानाले मधुमेह, रक्त क्यान्सर र उच्च रक्तचाप रोगीका लागि स्वास्थ्य उपयोगी मानिन्छ। करेलालाई अत्यधिक मात्रामा तेलमा तारेर, तावामा डढाएर र भुजिया बनाएर खानु हुँदैन। यसले करेलामा भएको तत्व नासिएर जान्छ। करेला खाँदा पहिले राम्रोसँग उसिनेर अलिअलि पानी राखेर पकाएर खानु लाभदायक मानिन्छ।
6: अहिले तपाईँ रेडियो पत्रिका सिलसिला सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाली मुद्रा कहिले छापिन थालेको हो त? अब यो बारेमा जानकारी दिँदैछौ। नेपालमा लिच्छवी राजा मानदेवको शासनकालदेखि धातुका सिक्काको शुरूआत भएको मानिन्छ। लिच्छवी कालमा मानाङ्क, गुणाङ्क, अंशुवर्मा, वैश्रवण, पशुपति, जिष्णुगुप्त त्यस्तै ब्रिक आदि मुद्राहरू प्रचलनमा आएको इतिहास भेटिन्छ। त्यसपछि मल्लकाल हुँदै शाहकालसम्म आइपुग्दा नोट र सिक्काको विकास हुँदै आएको मानिन्छ। विक्रम सम्बत 1989 सालमा टक्सार स्थापना गरी आधुनिक सिक्का र विक्रम सम्बत 2001 असोज 1 मा इस्तिहार जारी गरी नेपालमा कागजी मुद्रा प्रचलनमा आएका हुन्। त्यस्ता कागजी मुद्रा 100, 10 र 5 मोरुका थिए र तिनमा पहिलो खजान्ची पण्डित जनकराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि दुईजना खजान्ची पण्डित भरतराज पाण्डे र पण्डित नरेन्द्र राज पाण्डेले हस्ताक्षर गरी मोरु नोट निष्कासन भएका थिए। यी नोटहरू सदर मुलुकी खानाबाट निष्कासन भएका थिए। विक्रम सम्बत 2013 वैशाख 15 केन्द्रीय ब्याङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना भएको हो। विक्रम सम्बत 2016 फागुन 7 गतेदेखि हिमालय शमशेर जबराको हस्ताक्षरमा केन्द्रीय ब्याङ्क मार्फत कागजी नोटको निष्कासन गर्न सुरु गरिएको हो। त्यसो हो भने हाल नेपालमा कुन कुन दरका नोटहरू छापिने गर्दछन् त? अब यो जिज्ञासा मेटाउनका लागि, नेपालमा हालसम्म 11 दरका नोट निष्कासन भएका छन्। विगतमा 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 रुपियाँ दरका नोट निष्कासन गरिएको थियो। तर हाल 1, 2, 25 र 250 रुपियाँका दरका नोटहरू छपाई गरिँदैन र 5, 10, 20, 50, 100, 500 र 1000 रुपियाँका नोट मात्र निष्कासन हुँदै आएका छन्। 1 र 2 रुपियाँका सिक्का मात्र अहिले छपाई हुने गर्दछ। अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ।
5: कार्यक्रम सिलसिलामा अब प्रसङ्ग छ दुध उमालेपछि किन त्यसमा तर लाग्दछ भन्ने। दुध ठोस र तरल पदार्थको मिश्रण हो, यसमा चिल्लो पदार्थ पनि हुन्छ। दुधलाई तताउँदा तातिएको दुध र चिल्लो पदार्थ माथि आउँछ। तातिएको दुधबाट त्यसमा भएको पानीको मात्रा बाफ भएर जान्छ। दुधको भन्दा चिल्लो पदार्थको घनत्व कम हुने हुँदा दुधको माथिल्लो सतहमा पानीको मात्रा कम र ठोस कणहरूको मात्रा बढी हुन्छ। यसरी तातिएको दुधको माथिल्लो तहमा चिल्लो पदार्थ र ठोस कणहरू मिलेर एक आवरण बन्दछ, जसको घनत्व दुधको भन्दा थोरै हुन्छ। यसैलाई तर भनिन्छ। यसरी दुधमाथि तर लाग्दछ।
6: अब यसपछि यहाँहरू माझ राख्दैछौ उर्गेन दोङ र मोनिका राईको युगल स्वरमा एउटा गीतलाई। गीतमा रचना तथा संगीत रहेको छ उर्गेन दोङको। गीत सुन्दै गरौं, गीतपछि हामी अन्य विषय सामग्रीका साथ आउनेछौ। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला।